दीर्घ आयु दे अरोगता बक्षणी लव प्रीत सिंह जी रमन दीप कौर जी वरखा आप जी दे अजूरी बेट बेनती कर दे विदेश जान ते उत्थे पक्के होण दी बेनती कर दे कार दे रास करने शुकराने वजो अमन प्रीत सिंह जी लंगराले बेंत माया आदर कर दे परिवार विच सुख शांति दे अरोगता बख्शनी शुकराने वजा काका मेह दीप सिंह रविंदर सिंह जी लुधियाने।

द्वितीया माल कौ सगा लापहे संग रागनी पांचव था पहे गोंड करी यार देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी धनासरी ये पांचों गाई माल राग कौ

0: चातुर चक्रवर्ती चातुर चक्र भुगते स्वयंभव सुभंग सदा संयुक्ते दुकाल प्रणाश्य दयालु स्वरूपे सदा संगे आप अंगंग
1: देखते को फसल उठ रहे आप तो

वेद भेद कहंत कई शास्त्र से मृद बखान कहूं कथत ही सो पुराण। कई अग्न होत्र करंत कई उर्ध ताप दुरंत कई उर्ध बाहु संन्यास कहूं योग भेष उदास।

जलस्तु हि थलस्तु हि नदीस्तु हि नदस्तु हि वृक्षस्तु हि पतस्तु हि क्षितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अङ् रटस्तु अङ् ठटस्तु अङ् जिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु हि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु।

त्वा प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गदहा विभूत दारि गिद्वा मसान बास कर भी करत है। खूक मट बास लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधई मरत है। बिंद के सदैया दाहीज की बटैया देत बंदरा सदीव पाए ना गई फिरत है। अंगना अधीन कांप क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छिन्न कैसे के तरत है। भूत बन चारि छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पवखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानिये। फल के बसैया ताहे बांधरी गजैया कहे आदस फिरैया तैत भूत के पछानिये। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भछैया सोच को रसम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बटाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए। नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन जारी निखि के सनाम के महत लहियत है। माधव भवर ओ टेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम्बदूत कहियत है। मूढ़ रूढ़ पीट तन गूढ़ता को भेद पावे बूझ तन ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरिशाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जो कि जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली गरम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न पहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग तेव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमात सीतरण सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के वेद यो पुराण के सिमृत समूहन के होए होए बिताए है। मोहन दी मदार कित अश्विनी कुमार कित अंसा अवतार कित काल बस भय है। पीर यो पिकाबर कित गन न परत ते भूमि ही तह के फिर भूमि ही मिलाए है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट वेश पोष दी अनेक दानी वावत है। शीस को कह भयो मल्ल जो पकाठत अनेक दंड सोतनो डंडोत अष्टांग अत तीस को कह भयो रुकी जो बेटार रहे उर्द मुख मान तेना मुंड ने ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कद जाके कान में खजूरा दस मूंड छट कद मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को भचैया सद बन को भ्रमिया और दूसरो न बोक सौ कह भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक स्वांग कहूँ जोगी आप आगे बने कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंड धारी होके लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार की दर पुकार पर शीतकाल गुंचर ओ गदहा अनेक दा पुकार ही। कह भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोरटा कुठारन सो मार ही।
कहा भयो फांस डार बूढ़ो जड गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश बंशी डोल वो करत है आग में जरत गत राण की परत गर पताल के बास के वो जंग न तरत है।

काफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रास करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहुरा मसीद सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक बयान एक को फरमाओ है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आव कोर लाओ है। अल्लाह अफेक सोई पुरान ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में विलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मच केत उनको करत फच केत अच वच हो पच उठ जाएंगे। केत नव बीज अच पच को करेंगे फच केत प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंगवासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दान वड बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घस हर चंदन लगाए हर चुआचार भूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गाह हर गोरन मनाए हर मणि मटलीप हर भीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब बच हर पंडित तपन।

मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न भामंग अलेखंग भेखंग जोनी स्वरूपंग सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा बासदा को फिर कौन भेखं कहा नामता को कहा गय कहा वे कहा गय बखानो कहे मैं न आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातंग न कर

न नेहं न गेहं न सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविखे भवाने अचित्रे नरायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतं वैखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं अजोनी अक्षयाद अद्वय अजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं अभय निर्विखादं अछेदंग अभेदंग कर्वंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहं न गेहं न वर्भंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं।

कहूँ राजसी सात की तामसी हो, कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो, कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं, कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं, कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो, कहूँ जज विद्या धरे मानवी हो, कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या, कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या, कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी, कहूँ गोक की काव कथा कहानी, कहूँ अत्र सारं कहूँ भद्र रूपं, कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं, कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं, कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं, कहूँ परम पुराण को पार पावे, कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे, कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं, कहूँ वृद्धावस्था कहूँ बाल कर्मं, कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं, कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं, कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं, कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं, कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं, कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं, कहूँ अरबी तोर की पारसी हो, कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो, कहूँ देश भाख्या कहूँ देववाणी, कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी, कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं, कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं, कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा, कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा, कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं, कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं, कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी, कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी, कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो, कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो, कहूँ छैल छाला धरे छत्र धारी, कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी, नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता, छेदी अक्षय आद विधाता, न त्रस्तं

अनुकुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनाद आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग व्याध जय रोग शोक नहीं सत्र साध।

काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जेह नेत नेत उजरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेब जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अच्छय अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देसन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत सासर दुचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेव कई अग्न होत्र कई बौन हार कई गर्त कोट मृत को आहार कई गर्त साक पै पत्र भच्छ नई तदप देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व बरीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्न होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गर्त बांध बांधन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदव तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्र दुजरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त कहूँ अश्वमेध मख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ ऋद नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदव दास पायत न अंत कई गर्त कोट विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पा।

जय जम बहु जुगण जूह जुवंग भय गम बहु मेर पयाल भुवंग तपता बस सर्वजलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग।

छूतमतंगन गाध ब्याधा नादक तंगन खेद अभेद छेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ उजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा।

भ्रम है भूत है, अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है, भूत अभेक है बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है अनंत तेज जानिए, अभूम अभिज है सदा चिज तेज मानिए, न आद है न व्याद है अगाध रूप लिखिए, दोख है अदाग है अच्छे प्रताप विखिए, न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है, न आद है न गाद है न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि गरंत सेव है सदा सिदस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा, अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी पिसेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत बाट पेखी है, अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे, तुरंत द्रोह देह के अन

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम काज लेथले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पा श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्याज करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत बे मुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल जुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके वहां मन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाई तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार स्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो वैन सप्रताप जगदीश को कहो सकल

कह जी तब कह मरण है, कवन सुरक कह नरक, को सुगुड़ा को मूढ़ता, कहा तरक अब तरक दोहरा, को निंदा जस है कव...

कहाँ रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मह तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ

असुर मारण पति उदारण नरक निवारण गूढ़ कते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होसी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन भूष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र।

खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोक निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्टो वारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोलने वाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमा का सुपता।

चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी महासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म दुजे। घुंगुरु घमंकण शस्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धनम ध्वजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सी महासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते। सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पितल तले जय जय हो सी जवठौर निवासन बाय पताल काजन ले संकटे निवारण अधम उधारण तेज प्रकरखण तुंद तवेद हुदोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शस्त्र प्रकरखण आद नील अगाध अभे। चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तेज सरे कर कसा कुठारे नर

बारज बिलोजन प्रतन विमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरणा से सुप्र सुभा से दुष्ट ग्रसे चंचल अभ्रांगे वेद प्रसंगी तेज तुरंगे खंड सुरंग जय जय होशि मै खा सुर मर्दन आदा नाद गा दूर्धन घंट का विराजे रुण झुण बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सखो बराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न भजे रूह रणन जय जय होशि मै खा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विध्वंसन प्रलय पजुंसन जग विध्वंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट व्रताहन गाढ़ मते जय जय होशि मै खा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभ भंगी याद अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज व्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशि मै खा सुर मर्दन विश्व विध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरणा से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकट खंड सर्वर

दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट व्रता हे अर्ध लगा हे दुख हरे गंजन गुमाने।

हो देव सर्वं विचार जेम कि ओ आप करते पसार जद भूतन भय अनंत तौ कहो जथा मत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद्वै भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहत जेह नेत नेत सब वेद कहत कई ऊच नीच कीनो बनाओ सब वार पार जाओ को प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई

करुणा निधान कांवल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल सर प्रभाव सर्वत्र साध। जय जात पात नहीं भेद भरम, जय रंग रूप नहीं एक धर्म, जय शत्रु मित्र दो एक सार, अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाहि जय रूप रेख, कहे बास दास कहे कौन भेख, कहे नाम ताज है कवन जात, जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप, जय चक्र चहन नहीं रंग रूप, जय खेद वेद नहीं कर।

पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमाल ध्याव घोर कर दिज गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साध बौन साधना की देख बांधे आरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फारा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेली तेरी मान सो तपस्या करे दे।

गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीश ने आवे दे बते थे आए दुख दे के दलत है जिने तो है ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश कंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु पे न दीन साध दीन कहियत है।

को तंत्र है, कि वो होने को मंत्र है, कि पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, कि बुद्ध को प्रकाश है, कि सिद्धता को बास है, कि बुद्ध हूं घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, देवन को देव है, कि शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, ईमान को दिवैया है, जमजाल को कटैया है, कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, गये स्त्री है न नर है, विश्व को वरण है, गया पदा को हरण है, सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार अवार हूँ को बार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमाल गावे हबसी हल विध्या पूर्वी न पार पावे आसदया नाश है, देवन को देव महादेव हूँ के देव है, निरंजन अभेवनाथ अद्व अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ, भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है, दरैया ध्रुम छाल के, कामना के कार है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल निंद्री के कूल के, हंसनी सी सी हारो मही रसी हुसैन आबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के, चंपासी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद निक सोहियत है, हिमा से हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंगदार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी के ओजियारी सोहियत है, फारसी फिरंगी फारसी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है, भकरी गंधारी गोर कखरी गर्द जारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है, पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र दया तापी नाथ की

थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे वड़ा न होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै न होवै सोग देंदा रह न चुकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए। जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात जिंदन कर कै कीती रात। खसम वसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा हर के जन हम कीरे कर्म सतगुर शरण।

जान मोहले हो उबारे, कभी बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण हो इच्छित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम घावो, आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सख सभय कर तारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब पैरन को आज संघरिए, पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो भर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास नवरिय, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असदुज जो करियो रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा,

देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कण को शिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा त्रष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब

बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काऊं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे इस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जमन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह हैं रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला

चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

दास तिहारा जान आप नाम मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोय हार पराम मैं आन द्वार तोहे

मिट्टी मुसलमान पे पेड़ के कुम्यार गढ़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे भपरी।

0: कोती जाए सचिया के सुलगा दो।
1: अन्न देवता पानी देवता बिस्तर देवता नूर पंजवा पाया करता हुआ पाक पवित्र पापी सुतन गड्डिया।